0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। आज का दिन है मंगलवार और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान, आपकी मॉर्निंग गुड करने के लिए।
1: All is well, आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो,
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। और दोस्तों क्या बात करें यार, मंगलवार का अपना ही एक वाइब होता है। कहते हैं ना कि सुबह की पहली किरण लाए हर मन में नई उमंग। वाह, आज का दिन हो आपका मंगलमय, हो जाए हर सपना रंग। क्या बात है यार, सो आज है मंगलवार तो सब कुछ कुशल मंगल हो जाए, यही दुआ करते हैं। तो चिली फ्रीज फ्रेश मंगलवार को बनाते एकदम फन डे वाला डे। वेदर थोड़ा ठंडा, थोड़ा रोमांटिक, लेकिन हमारे जज्बात बिल्कुल गर्मा गर्म है। अगर आप ऑफिस जा रहे हो, मतलब अभी तो उठे होगे आप, स्कूल की बस आ गई होगी स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, या फिर बस चाय के साथ अपनी लाइफ का रिलैक्स सेक्शन आप एंजॉय कर रहे होगे, तो ये शो आज आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। बस एक बात याद रखिए, लाइफ को थोड़ा स्माइल से शुरू करो, थोड़ा फेथ से जियो और थोड़ा म्यूजिक से दिल को रिबूट करो। और म्यूजिक की जिम्मेदारी आज पूरी की पूरी मेरी है। आज हम बात करने वाले हैं उन छोटी छोटी बातों की जो कि ट्यूजडे को स्पेशल बना देती है, प्लस आपके मैसेज, आपकी डेडिकेशन और आज के थॉट ऑफ द डे के साथ। सो गेट रेडी, अपना मूड सेट कीजिएगा, क्योंकि यहां बजेगा सिर्फ वही जो आपका दिल चाहेगा। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान और ये आपका फेवरेट मॉर्निंग शो All is well. Stay tuned.
1: All is well. Arjay and Nanak's morning show. Freshness light radio ka flow.
0: On MGM 90.8 FM.

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपने सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनी नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस N6 सिडको छत्रपति।

पैसों का कारवा आरजे अदनान के साथ ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। एक छोटा सा गांव था धूप गांव, नाम भले ही धूप गांव पर पिछले 2 साल से वहां सूरज जैसे रूठा था। लगातार सूखा, टूटी फसलें, खाली कुएं और टूटते हुए लोग। उनमें से एक था छोटा अर्जुन, उम्र बस 10 साल। उसके पिताजी किसान थे पर खेत सूखे पड़े थे। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे अब कुछ नहीं बचेगा, ये साल भी चला गया। लेकिन अर्जुन हर सुबह अपनी टूटी बाल्टी में पानी भर

0: लेकर खेत में जाता और पौधों पे छिड़काव करता। एक दिन किसी ने पूछा, अरे बच्चे, जब बारिश ही नहीं है तो फसल कैसे होगी? अर्जुन ने मुस्कुराया और कहा, हो सकता है कल बारिश हो जाए, और अगर नहीं भी हुई तो आज ये पौधा मेरी वजह से जिंदा है। मेरी कोशिश भी तो एक उम्मीद है ना। उसकी बात सुनकर लोगों को अजीब लगा, पर अगले दिन अर्जुन फिर गया। उसके बाद अगले दिन फिर, धीरे धीरे कुछ और बच्चे उससे जुड़ गए, फिर कुछ और लोग, और देखते देखते पूरे गांव ने अर्जुन के साथ खेत संभालना शुरू कर दिया। एक शाम आकाश में अचानक काले बादल आने लगे, हवा की खुशबू बदली, मिट्टी ने सांस ली और बरसात शुरू हो गई धुआंधार। गांव वाले खुशी से चिल्लाए, नाचने लगे। अर्जुन की उम्मीद सच हो गई थी। उसके पिताजी ने अर्जुन को गले लगाते हुए बोला, तूने आज हम सबको सिखा दिया, उम्मीद सिर्फ इंतजार नहीं होता है, उम्मीद मेहनत का दूसरा नाम है। उस दिन के बाद गाँव में एक नया नियम बन गया, अगर हालात साथ न दे तो उम्मीद को साथ ले चलो, दुनिया उसी पर कायम है। इसी वजह से कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है।
1: किस्सों का कारवा आरजी अदनान के साथ ऑन MGM 90.8 FM।

लेट्स टॉक अबाउट हेल्दी लाइफ, क्योंकि हेल्दी रहोगे तो वेल्दी रहोगे। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, आरजी अदनान आपके साथ है। और आज का टॉपिक है रोज 30 मिनट चलने के 5 बड़े फायदे। चलना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन आलसी लोग मेरे जैसे भी कुछ अवॉइड करते हैं चलना। तो देखो यार, पहले दिन ना मजबूत रहता है, रेगुलर वॉक से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो जाता है। दूसरा क्या है, वेट कंट्रोल करने में मदद मिलती है, वॉक कैलोरीज बर्न करती है और मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखती है। तीसरा, स्ट्रेस कम होता है, चलने से बॉडी एंडोरफिन्स रिलीज करती है जो मूड को बेटर बनाते हैं और एंजाइटी कम करने में मदद करते हैं। चौथा है, शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है, इसलिए डॉक्टर भी रेगुलर वॉकिंग की सलाह देते हैं। और पांचवा है, नींद बेहतर आती है। जो लोग रोज थोड़ी देर वॉक करते हैं उन्हें अक्सर ज्यादा अच्छी और सुकून भरी नींद मिलती है। तो ये बात याद रखिए और शुरू कीजिएगा कि रोज तकरीबन 30 मिनट तो भी आप वॉक करोगे और अपनी जिंदगी को वेल्दी बनाओगे, यानी कि हेल्थ को वेल्दी रखोगे। करोगे ना, पक्का कीजिए और सुनते रहिए।

0: लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी ऑल इज वेल. आरजे अदनान तुमच्या सोबत आहे इन द शो.
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान कम मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो कम फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम. दोस्तों कहते हैं ना कि मुस्कुराइए आप कैमरे पर है, लेकिन असल में मुस्कुराना और खुश रहना सिर्फ कैमरे के लिए नहीं, हमारे सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है. सोचिए जरा, जब आप हंसते हैं, जब दिल से खुश रहते हैं, तभी तो दिमाग का हल्का हल्का लोड कम हो जाता है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और नींद अच्छी आती है और इम्यूनिटी भी मजबूत होती है. यानी छोटी सी हंसी आपको डॉक्टर से बचा सकती है. आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है. खुश रहना मतलब अपने दिमाग को रोजाना पॉजिटिविटी का टॉनिक देना, दोस्तों के साथ टाइम बिताना, अपनी पसंद का म्यूजिक सुनना या बस थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय करना. ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको माइंड फ्रेश करने में और रिफ्रेश करने में मदद करती है. तो अगली बार जब कोई कहे कि इतना हंस क्यों रहा है, तो मुस्कुरा कर कहना क्योंकि ये मेरी मेंटल हेल्थ का इंश्योरेंस है. तो कीप मुस्कुराना मेरी जान. बस क्या कीजिएगा आज के यार, किसी अपने से या किसी पराए से भी, या तो फिर अगर आप ऐटो में ट्रैवल करते हो ना, तो ऐटो वाले से बस हंसते मुस्कुराते बात कीजिएगा. वो भी आपको आपकी बहुत सारी बातें सुनेगा और उसकी भी बहुत सी बातें बताएगा. ये मैंने करके देखा है, बहुत अच्छा लगता है, आप भी कीजिएगा. यही था आज का लाइफ मंत्रा मेंटल हेल्थ को लेकर. स्टे ट्यून्ड.

0: फरमाइशें मैं पूरी कर दो, बस आप अपनी फरमाइशें मुझ तक पहुंचाते रहिएगा। आरजे अदनान आपके साथ इन द शो। हर दिन ना तो गानों की फरमाइश आती है तो वही हम पूरी करते हैं। तो आज की गाने की फरमाइश आई है मधुर देशमुख की तरफ से इस गाने के लिए।
1: मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं।
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाने की फरमाइश की है मधुर जी ने। तो मधुर जी की फरमाइश पर एक गाना भी हम प्ले करते हैं। बाय द वे दोस्तों, आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो हमें व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। आप बस फरमाइश करते रहिएगा, हम पूरी करेंगे। फिलहाल मधुर जी की फरमाइश पर एक गाना प्ले करते हैं। स्टे ट्यून।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से

बरसात के मौसम में चाय पीने का मजा आए हाय बहुत बेहतरीन होता है। ये अनुभव तो आपने लिया ही होगा। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और कहते हैं कि अगर बरसात के मौसम में चाय की चुस्की ना ली जाए तो बरसात की तोहिन होती है। और कुछ कुछ लोग इतने चाय लवर है ना, जिनमें से 4 कप 5 कप 6 कप और मेरे जैसे लोग 7 से 8 कप चाय तो गटक ले ही लेते हैं। एंड होटल में जाने के बाद हमें चाय सर्व की जाती है प्लास्टिक के कप में, बरोबर। किसी किसी होटल में नॉर्मल कप में दी जाती है और बहुत सारे होटल्स में प्लास्टिक के कप में चाय दी जाती है। अगर किसी होटल ने अब से प्लास्टिक के कप में चाय दी तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, ये खुद कहा है, ये नया आदेश जारी किया है FDA के कमिश्नर तुकाराम मुंडे जी ने। त्यांनी सांगितलं की प्लास्टिकच्या कपात गरम चहा देणाऱ्या हॉटेलवर कार्रवाई होणार आहे। बिकॉज यूज अँड थ्रो जो ग्लास होते है उसमें प्लास्टिक होता है भाई।

वही प्लास्टिक ना तो चाय के जरिए हमारे पेट में जा रहा है और उससे के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। तर तुम्ही सुद्धा पिऊ नका आणि हॉटेल वालांनो तुम्ही सुद्धा प्लास्टिक कप मध्ये चहा देऊ नका। अब चाय की इतनी बात हो रही है तो जरा मैं चाय की चुस्की लेकर आता हूँ, तब तक स्टे ट्यून्ड।

0: लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जिस पर आज भी बात करने के लिए लोग थोड़ा कतराते हैं और हर कोई ना तो इससे गुजरता है। स्पेशली आज का यूथ बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करता है एंड 20 to 30 ये जो एज है ना, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस अपने जिंदगी में आते हैं। किसी का हार्ट ब्रेक होता है, कोई करियर का टेंशन लेता है और अलग अलग चीजों की वजह से ना तो मेंटल हेल्थ का वो शिकार होते हैं। तो आज यूथ और उनकी मेंटल हेल्थ क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर, मानस उपचार एंड व्यसन मुक्ति तज्ञ। हेलो सर, आपका स्वागत है।
1: हेलो,
0: कैसे हो सर आप?
1: आई एम गुड, हाउ आर यू?
0: एकदम बढ़िया सर। तो सर, यूथ के सिलसिले में आज हम बात करेंगे।
1: यस,
0: तो मेंटल हेल्थ आज के वक्त में छोटे छोटे चीजों से बच्चों की मेंटल हेल्थ खराब होती है, मतलब यूथ की। चाहे फिर सबसे मेन रीजन है आज के वक्त में हार्ट ब्रेक हो, फिर एग्जाम प्रेशर हो। तो 20 से 30 के यंग एज में कौन कौन से चैलेंजेस को आज की जनरेशन फेस करती है जिससे उनकी मेंटल हेल्थ खराब होती है?
1: अभी क्या है, देखो अपन अभी उसको 20 से 30 साल के बजाय अपन ऐसा कंसीडर करेंगे 15-16 साल से वही। पहले क्या, जो प्रॉब्लम 20-30 में स्टार्ट होते थे वो अभी 15 से 16 साल के बीच में स्टार्ट होते हैं। उसका बेसिक रीजन है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, यानी ट्रांजिशनल फेज, यानी वो उसी वक्त है ना जो बच्चे होते हैं वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप से एडल्ट ग्रुप में जाते हैं। तो उन लोगों में फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिसमें अपन हार्मोनल इम्बेलेंसेस होते हैं उनमें। तो इस हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके बिहेवियर में, थिंकिंग पैटर्न में, या फिर उनका डेली स्लीप पैटर्न हो, या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, इन सब पे असर करता है। एंड यही सबसे नाजुक दौर है कि जिनमें सबसे ज्यादा हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, वही एक फेज है जिस फेज में कि आपका करियर भी उसी वक्त डिसाइड होता है, आपका जो एग्जाम का प्रेशर होता है, यानी जितने भी करियर रिलेटेड जितनी एग्जाम्स होती है, नीट हो, JEE हो, या और भी कई सारे एंट्रेंस है, या इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह है, वो उसी फेज में आती है। तो वो क्या होता है, उस वक्त करियर बनाने का एक प्रेशर रहता है और आगे की इनसिक्योरिटी रहती है कि मैं वो डिसीजन वो मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आगे चल के क्या होगा, ये सब चीज उसमें, इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहता है। अच्छा, यही फेज है कि इसी फेज में लोग एक्सप्लोर करते हैं, अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर करते हैं लोग बच्चे, और उसमें इसी फेज में अपना सेक्सुअलिटी अपना एक्सप्लोर करते, उस वजह से दिस इज द टाइम जो सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट और उनमें चीजें रहती है, बेचैनी वगैरह बहुत ज्यादा। सो ये वाला पहला हुआ करियर रिलेटेड चीज है। दूसरा मैं बता रहा हूँ, वही एक फेज होता है जिसमें रिलेशनशिप ब्रेकअप, जैसे अभी आपने कहा कि, और रिलेशनशिप में डिमांड बहुत होती है, प्रायोरिटीज वो सेट हो जाती है, ये सब चीजें उसमें और एडिशनल स्ट्रेस करती है। तीसरा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेने स्टार्ट करते इसी एज में, कि पहले खेल कूद वाला, फ्रेंड्स वाला वो ग्रुप होता है, ये फेज होता है जिसमें करियर, जॉब और वो सब चीजें स्टार्ट होती है, मैरिज रिलेटेड सभी चीजें इसी एज में आती है, वो एक उनमें अनसर्टेनिटी होती है उससे रिलेटेड भी, ये अपना लाइफ पार्टनर कैसे होगा, क्या होगा, यार दे आर इन लाइक सर्च ऑफ या अपने अच्छे लाइफ पार्टनर में, वो आजकल जितने अनसर्टेनिटी उनमें बहुत चीजें हो जाती। सो एक और ये एक चीज है। तीसरा इसका अभी क्या है कि एक सोशल मीडिया का ओवर यूज या उसका बहुत ज्यादा उसके ऊपर डिपेंड होना। अभी क्या है, सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट करते हैं, दे पोस्ट लाइक ब्यूटी, दे पोस्ट लाइक रिचनेस, दे पोस्ट लाइक की शॉपिंग या उन्होंने क्या चीजें की है, फिर उस चीज के लिए वो पाने के लिए वो कंपैरिजन उन बच्चों में बहुत बढ़ जाता है या इस एज में। एंड सोशल मीडिया का ओवर यूज होने की वजह से भी दिमाग में या ब्रेन में कुछ चेंजेस आती है, वो अलग से एडिशनल डिप्रेशन एंड एंजाइटी चीजें बढ़ाती है। यही एक चीज है जिसमें अभी क्या है कि एडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि क्या होता है, ये एक फेज है जो बच्चे थोड़ा सा घर से बाहर निकलते हैं तो इंडिपेंडेंट थोड़े हो जाते हैं, इन दौरान वो जो उनके ऊपर फैमिली थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि उनका या एक कंट्रोल रहता है, वो थोड़ा छूट जाने की वजह से इसमें एडिक्शन चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने का चांस रहता है। यही एक फेज है कि जिसमें बच्चे एडिक्शन की तरफ या यंग एडल्ट स्पेशली जो अल्कोहल या फिर है ना टोबैको स्मोकिंग या इससे भी और तरीके के थोड़ा और जैसे कैनाबिस वीड्स हुए या और भी ड्रग्स वगैरह करते हैं लोग, ये सब चीजें इसी चीज में ये एज ग्रुप रहता है जिसमें सबसे ज्यादा वो स्टार्ट होने का चांस रहता है, जो एडिशनल बर्डन हमें बढ़ाता है। सो फाइनेंशियली सोशली क्राइम रेट भी इसी फेज में बढ़ता है, कंपैरिजन बढ़ता है, सोशल मीडिया यूज, करियर अनसर्टेनिटी और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजें मर्ज की जाए तो दिस इज द रीजन कि इस फेज में सबसे ज्यादा स्ट्रगल फेस करते हैं।
0: सो हम सर के साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे लेकिन कुछ देर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ. यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है और हमारे साथ है डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार एंड व्यसन मुक्ति तज्ञ. सर के साथ आज हम बात कर रहे हैं यूथ के मेंटल हेल्थ के बारे में.
1: और सर, हमारी सोसाइटी में लड़कों से हमेशा स्ट्रांग रहने की बात की जाती है, तो स्ट्रांगनेस की वजह से इतने मेंटल हेल्थ पर कुछ असर होता है क्या कि हमेशा स्ट्रांग ही रहो?
2: एक चीज ये बताऊं मैं, लड़कों से एक्सपेक्टेशन हमें ज्यादा है, बट इन रियलिटी फीमेल के हार्मोन इस तरह से है, वो मेल से या लड़कों से लड़कियां ज्यादा अच्छे से स्ट्रेस हैंडल कर पाती हैं. उनमें वो पॉजिटिव हार्मोन से लड़कियां या फीमेल इमोशनल होती है, लड़के इमोशनल होते नहीं है, पर लड़कियां इमोशनल होके या गर्ल्स होती है वो वेंट आउट कर देती है अपने इमोशन होके. लड़के उनमें ईगो आता है इन चीज के लिए, दे कांट एक्सप्रेस. इस चीज से क्या होता है कि उनमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनसे एक्सपेक्टेशन इस तरह से रहते हैं. हमारी सोसाइटी भी अभी क्या है कि इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, कि वही घर चलाएगा, वही आगे चल के करियर उसने पहले बनाना चाहिए. उनके ऊपर हमेशा एक तरह का प्रेशर रहता है कि उन्हें कुछ कर दिखाना है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, पेरेंट्स को भी उसी से संभालना है, घर भी उसी को चलाना है, सेटल भी उसी को पहले होना है. तो ये चीज डेफिनेटली थोड़ा इन अवर सोसाइटी, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, उन चीजों में डेफिनेटली लड़कों के ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है. एंड जो मेल नेचर है कि उनमें थोड़ा सा एनर्जी स्ट्रेंथ ये चीजें ज्यादा होती है, तो उनका जो वेंट आउट होता है वो ज्यादा गुस्सा करके ये करके उनका वो ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं रादर देन गेटिंग इमोशनल.
0: सो कुछ इस तरीके से ये सब चीजें होती है जो सर ने अभी हमें एक्सप्लेन की. तो ये बात याद रखिए, और भी बहुत सारी बातें होगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इन द शो ऑल इज वेल.

0: वेलकम बॅक, यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM. RJ अदनान तुमच्या सोबत आहे. आपल्या सोबत आहेत मानसोपचार आणि व्यसन मुक्ती तज्ञ डॉक्टर अमोल पाथरीकर सर. और सर के साथ आज हम यूथ के मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं.
1: और सर, कैसे पता चले कि नॉर्मल स्ट्रेस और सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यू में क्या फर्क हो सकता है?
2: देखो, अभी क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस देखो, मैं जैसे बताऊँ की स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ. वो ऐसा वो स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होता है और हर किसी के लाइफ में है. किसी को फैमिली रिलेटेड है, किसी को फाइनेंशियल है, किसी को एकेडमिक है, किसी को करियर रिलेटेड या वर्क प्लेस पे ज्यादा स्ट्रेस. बट स्ट्रेस इज योर पार्ट ऑफ लाइफ. वो रहने वाला है, वो लाइफ का पार्ट है, वो हमेशा रहने वाला है. बस उसका जो कंटेंट है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा. जैसे वो कभी आज मुझे करियर रिलेटेड है, मुझे कल पढ़ाई का होगा, परसों फाइनेंशियल रिलेटेड होगा, तीसरा मुझे मेरे रिलेशनशिप के लेकर होगा. ये चीजें चलते रहेगी. सो क्या है कि ये स्ट्रेस होना थोड़ा जरूरी भी है, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस रहा तो वो एक्टिंग फोर्स काम करता है हमारे लिए. अगर स्ट्रेस नहीं रहा है, दूसरे दिन एग्जाम में अगर मैं आज स्ट्रेस नहीं लू तो मैं पढ़ूंगा नहीं ना, तो इट इज एन एक्टिवेटिंग फोर्स. वो थोड़ा जरूरी होता है. बट स्ट्रेस जब हावी होता है मीन्स आप परसिस्टेंटली वो थॉट आपके दिमाग से नहीं जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे आप उसी थॉट में रहते हो, और जिसके वजह से आपको बेचैनी होना, हमेशा डिप्रेस या सैड फील होना, या नींद नहीं आना, ये जब चीजें होती है, या गुस्सा बढ़ जाना, या फिर बिल्कुल शांत हो जाना, ये सब चीजें होने लगती है, तब थोड़ा समझना है कि नाउ स्ट्रेस इज ओवरवेलमिंग. नाउ आपका स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी कम हो या फिर स्ट्रेस का लेवल थोड़ा बढ़ चुका है. सो दिस इज द डिस्टिंगुइशिंग फैक्टर कि लाइफ में स्ट्रेस थोड़ा जरूरी है, बट वो हावी होता है और ये सब चीजें आती है, तो समझना कि यस नाउ दिस इज

0: प्रॉब्लमेटिक थिंग. हाँ जी,
1: तो कभी कभार स्ट्रेस होना भी जरूरी है.
0: जरूरी है,
1: एक लिमिट में.
0: एक लिमिट में,
1: यस. सो ये सब बातें याद रखिएगा किस तरीके से होती है. और भी अपनी बहुत सारी बातें होगी, लेकिन कुछ ही देर में. तब तक स्टे ट्यून.

0: आज के यूथ में बहुत से मेंटल हेल्थ वाले प्रॉब्लम नजर आते हैं। इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है एंड हमारे साथ साइकेट्रिक डॉक्टर अमोल पाथरीकर सर। स्ट्रेस आता है या वो मेंटल हेल्थ से जूझता है तो उसे लगता है कि मैं एक सुट्टा मार लूंगा या एक ड्रिंक कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा, तो ये कितना हार्मफुल है और अगर इससे बाहर निकलना है।
1: पहले तो देखो ये रिलेशन जो है ना कि स्ट्रेस और एडिक्शन, पहले तो ये कभी एक साथ जोड़ना नहीं है। अल्कोहल जैसी एक चीज है, जैसे वो आपके दिमाग में जो स्ट्रेस से जो चीजें ब्रेन में आती है उससे कई गुना ज्यादा अल्कोहल या एडिक्शन वो ब्रेन में वो निगेटिव चेंजेस लाता है। इतने हार्मोनल डिफिकल्टीज आती है उन चीजों में एडिक्शन की वजह से, जिसके वजह से आपका डिप्रेशन 10 गुना ज्यादा बढ़ता है। आपका क्या करता है, उतने थोड़ी देर के लिए हमें बस स्ट्रेस बुलाने के लिए वो 2-3 घंटा 4 घंटा आपका स्ट्रेस अल्कोहल कम करेगा, बट आपको दूसरे दिन जब उसका इफेक्ट निकल जाएगा एडिक्शन का, तो आपका स्ट्रेस 10 गुना ज्यादा बढ़ेगा। आप पहले से ज्यादा और स्ट्रेस और आप पहले से ज्यादा डिप्रेस फील करोगे। कि पहले लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेस ना आए इसलिए अल्कोहल पे, पर बाद में है ना ये इक्वेशन थोड़ा रिवर्स हो जाता है। फिर बाद में आप उसके ऊपर इतना डिपेंड हो जाते हो कि आप अल्कोहल का क्वांटिटी बढ़ाने के बाद भी आपको स्ट्रेस उतना हैंडल होता नहीं है, आप वो सैडनेस आता ही है। यानी पहले मुझे मैं थोड़ा ड्रिंक करता था तो मुझे ठीक लगता था, अब मुझे मेरा क्वांटिटी मैंने बढ़ा दिया तो भी मुझे पहले जैसा ठीक नहीं लग रहा है। अल्कोहल आपके दिमाग में चेंजेस लाएगा, साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकली भी लाएगा। और तीसरा कि ये है कि अल्कोहलिक्स में सुसाइड रेट भी बहुत ज्यादा होता है प्रैक्टिकली सीन। तो क्या है कि अल्कोहल आपका स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाता, यानी कैपेसिटी कभी नहीं बढ़ाता है, रादर आपको स्ट्रेस के लिए और डिफिकल्ट कर देता है, आपको जिंदगी जीना डिफिकल्ट हो जाती है उससे, आप स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते।
0: सो मतलब ये एक बहाने है स्ट्रेस कम करने की, तो वो बात गलत है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये चीजें बस गाने में अच्छी लगती है, रियलिटी में नहीं। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स लॉट। आज हमने यूथ के मेंटल हेल्थ के बारे में बात की, आई होप कि इससे हमारे यूथ को जरूर कुछ फायदा होगा। स्टे ट्यून्ड।

डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एम्बियंस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है आपका दिन अच्छा बीत रहा होगा। पूरे दिन की भागदौड़, काम और जिम्मेदारियों के बाद अब समय है थोड़ा रिलैक्स करने का, मुस्कुराने का और अपने पसंदीदा गानों के साथ इस शाम को और भी खूबसूरत बनाने का। शाम का समय अपने आप में बहुत खास होता है। कोई ऑफिस से घर लौट रहा होता है, कोई अपने परिवार के साथ समय बिता रहा होता है, तो कोई चाय की प्याली के साथ थोड़ी सुकून भरी बातें कर रहा होता है। ऐसे ही हर पल को और यादगार बनाने के लिए हम लेकर आए हैं बेहतरीन गानों का सिलसिला जो आपके दिल को छू जाएगा। और दोस्तों, अपने सारे तनाव को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दीजिए, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आइए और तैयार हो जाइए संगीत के इस खूबसूरत सफ़र के लिए। और ऑफ कोर्स मैं हूँ आपके साथ और शो को बनाएंगे और भी खास, इस इवनिंग को बनाएंगे दिल के करीब। रहिए हमारे साथ क्योंकि अभी आने वाले हैं एक से बढ़कर एक शानदार गाने सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग इवनिंग की ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कहते हैं ना, मुस्कुराने में कोई खर्च नहीं होता, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान न सिर्फ हमारा बल्कि किसी और का पूरा दिन बना सकती है। जिंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी काम का तनाव, कभी जिम्मेदारियों का दबाव, तो कभी छोटी छोटी परेशानियाँ हमें थका देती है। लेकिन ऐसे समय में अगर कोई हमें एक प्यारे से मुस्कान दे दे तो मन को सुकून मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है, कंटीजियस होती है, जब आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाला भी मुस्कुराने लगता है। एक मुस्कान रिश्ते में मिठास घोलती है, दूरियों को कम करती है और माहौल को खुशनुमा बना देती है। तो दोस्तों, आज खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, चुनौती भरा क्यों ना हो, चेहरे पर मुस्कान कभी भी फीकी नहीं पड़ने देंगे। और अगर आपके आसपास कोई उदास दिखाई दे तो उसे अपनी एक प्यारी से मुस्कान जरूर दीजिए, क्या पता आपकी वही मुस्कान उसके पूरे दिन को बेहतर बना दे। इसी खूबसूरत सोच के साथ अब समय है एक शानदार गाने का। सुनते रहिए हैप्पी इवनिंग, क्योंकि यह हर शाम बनती है दिल से और भी खास। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आज की दुनिया में हम सब अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि कई बार अपनों से खुलकर बात करने का समय ही नहीं मिल पाता, लेकिन एक छोटी सी चैट, एक प्यारा सा मैसेज या एक कैसे हो सवाल भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। आजकल चैट सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं रही बल्कि ये रिश्तों को जोड़ने और दिलों को करीब लाने का एक खूबसूरत माध्यम बन गई है। चाहे दोस्तों से मस्ती भरी बातें हो, परिवार का हालचाल लेना हो या किसी खास इंसान से दिल की बातें शेयर करनी हो, एक चैट में हर एहसास छिपा होता है। लेकिन दोस्तों, टेक्नोलॉजी के इस दौर में ये भी ज़रूरी है कि हम सिर्फ मैसेज तक सीमित ना रहे बल्कि समय समय पर अपनों से मिले, उनकी आवाज़ सुने और रिश्तों को और मजबूत बनाएं। तो आज की इस खूबसूरत शाम में अगर आपने अभी तक किसी अपने को मैसेज नहीं किया है तो शो खत्म होने से पहले उन्हें एक प्यारा सा मैसेज ज़रूर भेजिए। फिलहाल बातों और एहसासों का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अब वक्त हो गया है एक शानदार गाने का, तो सुनिए और इस पल को दिल से महसूस कीजिए। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। दोस्तों, प्यार की शुरुआत हमेशा शब्दों से हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार एक नज़र ही वो बात कह जाती है जिसे कहने में लोगों को सालों लग जाते हैं। सच ही तो है, किसी खास की एक प्यारी सी नज़र दिल को छू जाए तो पूरा दिन ही खूबसूरत लगने लगता है। ज़िंदगी में कभी ना कभी हम सभी ने उस एहसास को महसूस किया है जब किसी की मुस्कुराहट, उसकी नज़रें या उसका अंदाज हमारे दिल में अलग सी हलचल पैदा कर देता है। फिर हर गाना अपना सा लगने लगता है और हर शाम कुछ ज़्यादा ही हसीन नज़र आने लगती है। प्यार का यही तो जादू है दोस्तों, इसमें बड़े बड़े वादों से ज़्यादा मायने रखते हैं छोटे छोटे पल। एक मुस्कान, एक नज़र और एक प्यारा सा एहसास। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा खास शख्स है जिसकी मौजूदगी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है तो आज की इस खूबसूरत शाम में उनके नाम कर दीजिए और अब प्यार और एहसासों से भरे इसी माहौल को आगे बढ़ाने हैं और सुनने हैं कुछ रोमांटिक गाने ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM। साथ है तो बात है।
1: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
4: ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग and technology programs BTech 4 years after HSC, computer science and engineering, IoT, cyber security including blockchain technology, computer science and engineering, cyber security, electronics engineering, VLSI design and technology, electrical engineering, robotics and automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhajinagar.

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आज टेक्निक इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि अब इंटेलिजेंट रोबोट यानी स्मार्ट रोबोट हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कभी जो चीज़ें हमें सिर्फ फिल्मों में दिखाई देती थी आज वो हकीकत बन चुकी है। इंटेलिजेंट रोबोट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मुश्किल और समय लेने वाले कामों को बहुत आसानी और तेजी से करता है। फैक्ट्रियों में मशीन ने प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद कर रही है, वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टरों की सहायता करके इलाज को और बेहतर बना रहा है रोबोट। इतना ही नहीं, आज कई स्मार्ट रोबोट घर के छोटे छोटे कामों में भी मदद कर रहे हैं, जैसे सफाई करना, सामान को व्यवस्थित करना, बुजुर्गों की देखभाल में सहयोग देना। इससे लोगों का समय बचता है और अपने परिवार और पसंदीदा कामों के लिए ज़्यादा समय निकल पाता है। हालांकि टेक्निक का सही और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निक तभी सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है जब उसका उपयोग इंसानों की भलाई और सुविधाओं के लिए किया जाए। तो दोस्तों, आने वाला समय टेक्निक और इंसानों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का है और शायद भविष्य में स्मार्ट रोबोट हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक सामान्य हिस्सा बन जाए। फिलहाल टेक्निक की बातों के साथ अब समय है एक शानदार गाने का। सुनते रहिए दिल से, क्योंकि यहाँ हर शाम होती है खुशी और संगीत के नाम। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। टेक्निक ने हमारी जिंदगी को पहले से कई ज्यादा आसान बना दिया है। आज इंटेलिजेंट रोबोट कई ऐसे काम कर रहे हैं जिन्हें करने में इंसानों को काफ़ी समय और मेहनत लगती थी, लेकिन हर नई टेक्निक की तरह इसके कुछ नुकसान भी है जिसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे बड़ी चिंता है रोज़गार की। जैसे जैसे कंपनियां और फैक्ट्रियां रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे वैसे कुछ पारंपरिक नौकरियों पर असर पड़ रहा है। कई ऐसे काम जो पहले इंसान करते थे अब मशीनें करने लगी है। इसके अलावा रोबोट पूरी तरह टेक्निक पर आधारित होते हैं। अगर सिस्टम में कोई खराबी आ जाए या टेक्निक की समस्या पैदा हो जाए तो काम रुक सकता है और नुकसान भी हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि रोबोट में भावनाएं नहीं होती, वो इंसानों की तरह संवेदनाएं, रिश्तों की अहमियत या भावनात्मक परिस्थितियों को पूरी तरह नहीं समझ सकते। इसीलिए कई जगहों पर इंसानी समझ और अनुभव की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, टेक्निक का इस्तेमाल जरूर कीजिए, लेकिन संतुलन और समझदारी के साथ, क्योंकि मशीनें हमारी मदद कर सकती है लेकिन इंसानों की जगह पूरी तरह नहीं ले सकती। इसी सोच के साथ अब वक्त है संगीत का। सुनते रहिए दिल से, जहां बातों के साथ साथ मिलता है बेहतरीन गीतों का साथ। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का दौर है। एआई अब सिर्फ फिल्मों या बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारी मोबाइल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। एआई ने हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया है। ये हमें जानकारी ढूंढने का, काम को तेज़ी से पूरा करने का और नई चीज़ों को सीखने में मदद करता है, लेकिन इसके साथ साथ सतर्क रहना भी उतना ही ज़रूरी है। आजकल इंटरनेट पर एआई की मदद से नकली फोटो, वीडियो और आवाजें आसानी से बनाई जा सकती है। कई बार लोग फर्जी कॉल, मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए किसी भी जानकारी पर तुरंत भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लीजिए। इसके अलावा अपनी निजी जानकारी जैसे बैंक डिटेल्स, OTP, पासवर्ड या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी किसी के साथ साझा न करे, चाहे सामने वाला कितना भी भरोसेमंद क्यों ना हो। याद रखिए, टेक्निक हमारे लिए है लेकिन उसका सुरक्षित और समझदारी से इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। AI एक बेहतरीन सहायक हो सकता है बेशर्त हम जागरूक और सावधान रहे। इसी जरूरी संदेश के साथ अब बढ़ते हैं संगीत की ओर। सुनते रहिए आप दिल से, जहां हर शाम होती है खास सिर्फ आपके साथ। ओनली ऑन MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है कि आज के गाने, बातें और प्यारे प्यारे लम्हों ने आपके शाम को थोड़ा और खास और यादगार बनाया होगा। अगर हमारी बातों ने आपके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाई है तो समझिए कि हमारा मकसद पूरा हो गया है। जिंदगी की भाग दौड़ में अपने लिए और अपनों के लिए थोड़ा समय निकालना मत भूलिए। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने आसपास भी खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि एक अच्छी सोच और एक प्यारी सी मुस्कान किसी का भी दिन खूबसूरत बना सकती है। आपका साथ, आपके संदेश और आपका प्यार ही हमें हर दिन आपसे जोड़ कर रखता है। इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम फिर मिलेंगे एक नई शाम, नई बातों और नए शानदार गानों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा खुश रहिए। टेक केयर एंड गुड नाइट, हैव अ वंडरफुल नाइट एंड स्टे ट्यून्ड टू एमजीएम 90.8 FM। साथ है तो बात
1: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याच्या खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
4: एडमिशन Open MGM University School of Engineering and Technology.
5: Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhaji नगर।

किस्सों का कारवा आरजे अदनान के साथ ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। एक छोटा सा गांव था धूप गांव, नाम भले ही धूप गांव पर पिछले 2 साल से वहां सूरज जैसे रूठा था। लगातार सूखा, टूटी फसलें, खाली कोई और टूटते हुए लोग। उनमें से एक था छोटा अर्जुन, उम्र बस 10 साल। उसके पिताजी किसान थे पर खेत सूखे पड़े थे। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे अब कुछ नहीं बचेगा, ये साल भी चला गया। लेकिन अर्जुन हर सुबह अपनी टूटी बाल्टी में पानी भरकर खेत में जाता और पौधों पे छिड़काव करता। एक दिन किसी ने पूछा, अरे बच्चे जब बारिश ही नहीं है तो फसल कैसे होगी? अर्जुन ने मुस्कुराया और कहा, हो सकता है कल बारिश हो जाए, और अगर नहीं भी हुई तो आज ये पौधा मेरी वजह से जिंदा है, मेरी कोशिश भी तो एक उम्मीद है ना। उसकी बात सुनकर लोगों को अजीब लगा, पर अगले दिन अर्जुन फिर गया। उसके बाद अगले दिन फिर, धीरे धीरे कुछ और बच्चे उससे जुड़ गए, फिर कुछ और लोग, और देखते देखते पूरे गांव ने अर्जुन के साथ खेत संभालना शुरू कर दिया। एक शाम आकाश में अचानक काले बादल आने लगे, हवा की खुशबू बदली, मिट्टी ने सांस ली और बरसात शुरू हो गई धुआंधार। गांव वाले खुशी से चिल्लाए, नाचने लगे। अर्जुन की उम्मीद सच हो गई थी। उसके पिताजी ने अर्जुन को गले लगाते हुए बोला, तूने आज हम सबको सिखा दिया, उम्मीद सिर्फ इंतजार नहीं होता है, उम्मीद मेहनत का दूसरा नाम है। उस दिन के बाद गांव में एक नया नियम बन गया, अगर हालात साथ न दे तो उम्मीद को साथ ले चलो, दुनिया उसी पर कायम है। इसी वजह से कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। किस्सों का कारवा आरजे अदनान के साथ ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

बरसात के मौसम में चाय पीने का मजा आए हाय बहुत बेहतरीन होता है, ये अनुभव तो आपने लिया ही होगा। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और कहते हैं कि अगर बरसात के मौसम में चाय की चुस्की ना ली जाए तो बरसात की तोहिन होती है। और कुछ कुछ लोग इतने चाय लवर है ना, दिन में से 4 कप 5 कप 6 कप, और मेरे जैसे लोग 7 से 8 कप चाय तो गटक ले ही लेते हैं। एंड होटल में जाने के बाद हमें चाय सर्व की जाती है प्लास्टिक के कप में, बरोबर। किसी किसी होटल में नॉर्मल कप में दी जाती है और बहुत सारे होटल्स में प्लास्टिक के कप में चाय दी जाती है। अगर किसी होटल ने अब से प्लास्टिक के कप में चाय दी तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, ये खुद कहा है, ये नया आदेश जारी किया है FDA के कमिश्नर तुकाराम मुंडे जी ने। त्यांनी सांगितलं की प्लास्टिकच्या कपात गरम चहा देणाऱ्या हॉटेलवर कारवाई होणार आहे। बिकॉज यूज अँड थ्रो जो ग्लास होते है उसमें प्लास्टिक होता है भाई, और वही प्लास्टिक ना तो चाय के जरिए हमारे पेट में जा रहा है और उससे के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे है। तर तुम्ही सुद्धा पिऊ नका आणि हॉटेल वाल्यांनो तुम्ही सुद्धा प्लास्टिक कप मध्ये चहा देऊ नका। अब चाय की इतनी बात हो रही है तो जरा मैं चाय की चुस्की लेकर आता हूँ, तब तक स्टे ट्यून्ड।

0: लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जिस पर आज भी बात करने के लिए लोग थोड़ा कतराते हैं और हर कोई ना तो इससे गुजरता है. स्पेशली आज का यूथ बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करता है एंड 20 to 30 ये जो एज है ना, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस अपने जिंदगी में आते हैं. किसी का हार्ट ब्रेक होता है, कोई करियर का टेंशन लेता है और अलग अलग चीजों की वजह से ना तो मेंटल हेल्थ का वो शिकार होते हैं. तो आज यूथ और उनकी मेंटल हेल्थ क्या है, इस पर हम बात करेंगे. हमारे साथ है डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर, मानस उपचार एंड व्यसन मुक्ति तज्ञ. हेलो सर, आपका स्वागत है.
1: हेलो,
0: कैसे हो सर आप?
1: आई एम गुड, हाउ आर यू?
0: एकदम बढ़िया सर. तो सर, यूथ के सिलसिले में आज हम बात करेंगे.
1: यस,
0: तो मेंटल हेल्थ आज के वक्त में ना छोटे छोटे चीजों से बच्चों की मेंटल हेल्थ खराब होती है, मतलब यूथ की. चाहे फिर सबसे मेन रीजन है आज के वक्त में हार्ट ब्रेक हो, फिर एग्जाम प्रेशर हो. तो 20 से 30 के यंग एज में कौन कौन से चैलेंजेस को आज की जनरेशन फेस करती है जिससे उनकी मेंटल हेल्थ खराब होती है?
1: अभी क्या है, देखो अपन अभी उसको 20 से 30 साल के बजाय अपन ऐसा कंसिडर करेंगे 15-16 साल से. वही पहले क्या, जो प्रॉब्लम 20-30 में स्टार्ट होते थे वो अभी 15-16 साल के बीच में स्टार्ट होते हैं. उसका बेसिक रीजन है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, यानी ट्रांजिशनल फेज, यानी वो उसी वक्त है ना जो बच्चे होते हैं वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप से एडल्ट ग्रुप में जाते हैं. तो उन लोगों में फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिसमें अपन हार्मोनल इम्बेलेंसेस होते हैं उनमें. तो इस हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके बिहेवियर में, थिंकिंग पैटर्न में, या फिर उनका डेली स्लीप पैटर्न हो, या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, इन सब पे असर करता है. एंड यही सबसे नाजुक दौर है कि जिनमें सबसे ज्यादा हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, वही एक फेज है जिस फेज में कि आपका करियर भी उसी वक्त डिसाइड होता है, आपका जो एग्जाम का प्रेशर होता है, यानी जितने भी करियर रिलेटेड जितनी एग्जाम्स होते हैं, नीट हो, JEE हो, या और भी कई सारे एंट्रेंस या इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह है, वो उसी फेज में आती है. तो वो क्या होता है, उस वक्त करियर बनाने का एक प्रेशर रहता है और आगे की इनसिक्योरिटी रहती है कि मैं वो डिसीजन वो मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आगे चल के क्या होगा, ये सब चीज उसमें इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहता है. अच्छा, यही फेज है कि इसी फेज में लोग एक्सप्लोर करते हैं अपनी आइडेंटिटी, एक्सप्लोर करते हैं लोग बच्चे, और उसमें इसी फेज में अपना सेक्सुअलिटी अपना एक्सप्लोर करते, उस वजह से दिस इज द टाइम जो सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट और उनमें चीजें रहती है, बेचैनी वगैरह बहुत ज्यादा. सो ये वाला पहला हुआ करियर रिलेटेड चीज है. दूसरा मैं बता रहा हूँ, वही एक फेज होता है जिसमें रिलेशनशिप ब्रेकअप, जैसे अभी आपने कहा कि, और रिलेशनशिप में डिमांड बहुत होती है, प्रायोरिटीज वो सेट हो जाती है, ये सब चीजें उसमें और एडिशनल स्ट्रेस करती है. तीसरा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेने स्टार्ट करते इसी एज में, कि पहले खेल कूद वाला, फ्रेंड्स वाला वो ग्रुप होता है, ये फेज होता है जिसमें करियर, जॉब और वो सब चीजें स्टार्ट होती है, मैरिज रिलेटेड सभी चीजें इसी एज में आती है, वो एक उनमें अनसर्टेनिटी होती है उससे रिलेटेड भी, कि अपना लाइफ पार्टनर कैसे होगा, क्या होगा, यार दे आर इन लाइक सर्च ऑफ या अपने अच्छे लाइफ पार्टनर में, वो आजकल जितने अनसर्टेनिटी उनमें बहुत चीजें हो जाती. सो एक और ये एक चीज है. तीसरा इसका अभी क्या है कि एक सोशल मीडिया का ओवर यूज या उसका बहुत ज्यादा उसके ऊपर डिपेंड होना. अभी क्या है, सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट करते हैं, दे पोस्ट लाइक ब्यूटी, दे पोस्ट लाइक रिचनेस, दे पोस्ट लाइक की शॉपिंग या उन्होंने क्या चीजें की है, फिर उस चीज के लिए वो पाने के लिए वो कंपैरिजन उन बच्चों में बहुत बढ़ जाता है या इस एज में. एंड सोशल मीडिया का ओवर यूज होने की वजह से भी दिमाग में या ब्रेन में कुछ चेंजेस आती है, वो अलग से एडिशनल डिप्रेशन एंड एंजाइटी चीजें बढ़ाती है. यही एक चीज है जिसमें अभी क्या है कि एडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कि क्या होता है, ये एक फेज है जो बच्चे थोड़ा सा घर से बाहर निकलते हैं तो इंडिपेंडेंट थोड़े हो जाते हैं, इन दौरान वो जो उनके ऊपर फैमिली थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि उनका या एक कंट्रोल रहता है, वो थोड़ा छूट जाने की वजह से इसमें एडिक्शन चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने का चांस रहता है. यही एक फेज है कि जिसमें बच्चे एडिक्शन की तरफ या यंग एडल्ट स्पेशली जो अल्कोहल या फिर है ना टोबैको स्मोकिंग या इससे भी और तरीके के थोड़ा और जैसे कैनाबिस वीड्स हुए या और भी ड्रग्स वगैरह करते हैं लोग, ये सब चीजें इसी चीज में ये एज ग्रुप रहता है जिसमें सबसे ज्यादा वो स्टार्ट होने का चांस रहता है, जो एडिशनल बर्डन हमें बढ़ाता है. सो फाइनेंशियली सोशली क्राइम रेट भी इसी फेज में बढ़ता है, कंपैरिजन बढ़ता है, सोशल मीडिया यूज, करियर अनसर्टेनिटी और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजें मर्ज की जाए तो दिस इज द रीजन कि इस फेज में सबसे ज्यादा स्ट्रगल फेस करते हैं.
0: सो हम सर के साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे लेकिन कुछ देर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून.

0: लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ. यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM. RJ अदनान आपके साथ है और हमारे साथ है डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार एंड व्यसन मुक्ति तज्ञ. सर के साथ आज हम बात कर रहे हैं यूथ के मेंटल हेल्थ के बारे में.
1: और सर, हमारी सोसाइटी में लड़कों से हमेशा स्ट्रांग रहने की बात की जाती है, तो स्ट्रांगनेस की वजह से इतने मेंटल हेल्थ पर कुछ असर होता है क्या कि हमेशा स्ट्रांग ही रहो?
2: एक चीज ये बताऊं मैं, लड़कों से एक्सपेक्टेशन हमें ज्यादा है, बट इन रियलिटी फीमेल के हार्मोन इस तरह से है, वो मेल से या लड़कों से लड़कियां ज्यादा अच्छे से स्ट्रेस हैंडल कर पाती हैं. उनमें वो पॉजिटिव हार्मोन से लड़कियां या फीमेल इमोशनल होती है, लड़के इमोशनल होते नहीं है, पर लड़कियां इमोशनल होके या गर्ल्स होती है वो वेंट आउट कर देती है अपने इमोशन होके. लड़के में ईगो आता है इन चीज के लिए, दे कांट एक्सप्रेस. इस चीज से क्या होता है कि उनमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनसे एक्सपेक्टेशन इस तरह से रहते हैं. हमारी सोसाइटी भी अभी क्या है कि इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, कि वही घर चलाएगा, वही आगे चल के करियर उसने पहले बनाना चाहिए. उनके ऊपर हमेशा एक तरह का प्रेशर रहता है कि उन्हें कुछ कर दिखाना है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, पेरेंट्स को भी उसी से संभालना है, घर भी उसी को चलाना है, सेटल भी उसी को पहले होना है. तो ये चीज डेफिनेटली थोड़ा इन अवर सोसाइटी, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, उन चीजों में डेफिनेटली लड़कों के ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है. एंड जो मेल नेचर है कि उनमें थोड़ा सा एनर्जी स्ट्रेंथ ये चीजें ज्यादा होती है, तो उनका जो वेंट आउट होता है वो ज्यादा गुस्सा करके ये करके उनका वो ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं रादर देन गेटिंग इमोशनल.
0: सो कुछ इस तरीके से ये सब चीजें होती है जो सर ने अभी हमें एक्सप्लेन की. तो ये बात याद रखिये, और भी बहुत सारी बातें होगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इन द शो ऑल इज वेल.

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM University मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
2: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
1: पीजी, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
2: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
1: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
3: तो MGM University Institute of Indian and Foreign Language लेकर आया है BA Honors in English, MA English, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG Diploma in Arabic. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
1: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 or 9665353515.

0: वेलकम बॅक, यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान तुमच्या सोबत आहे. आपल्या सोबत आहे मानसोपचार आणि व्यसनमुक्ती तज्ञ डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर. और सर के साथ आज हम यूथ के मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं.
1: और सर कैसे पता चले कि नॉर्मल स्ट्रेस और सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यू में क्या फर्क हो सकता है?
2: देखो अभी क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस देखो मैं वैसे बताऊँ की स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ. वो ऐसा वो स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होता है और हर किसी के लाइफ में है. किसी को फैमिली रिलेटेड है, किसी को फाइनेंशियल है, किसी को एकेडमिक है, किसी को करियर रिलेटेड या वर्क प्लेस पे ज्यादा स्ट्रेस. बट स्ट्रेस इज योर पार्ट ऑफ लाइफ, वो रहने वाला है, वो लाइफ का पार्ट है, वो हमेशा रहने वाला है. बस उसका जो कंटेंट है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा. जैसे वो कभी आज मुझे करियर रिलेटेड है, मुझे कल पढ़ाई का होगा, परसों फाइनेंशियल रिलेटेड होगा, तीसरा मुझे मेरे रिलेशनशिप के लेकर होगा. ये चीजें चलते रहेगी. सो क्या है कि ये स्ट्रेस होना थोड़ा जरूरी भी है, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस रहा तो वो एक्टिंग फोर्स काम करता है हमारे लिए. अगर स्ट्रेस नहीं रहा है, दूसरे दिन एग्जाम है, अगर मैं आज स्ट्रेस नहीं लूं तो मैं पढ़ूंगा नहीं ना, तो इट इज एन एक्टिवेटिंग फोर्स. वो थोड़ा जरूरी होता है. बट स्ट्रेस जब हावी होता है मीन्स आप परसिस्टेंटली वो थॉट आपके दिमाग से नहीं जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे आप उसी थॉट में रहते हो, और जिसके वजह से आपको बेचैनी होना, हमेशा डिप्रेस या सैड फील होना, नींद नहीं आना, ये जब चीजें होती है, गुस्सा बढ़ जाना या फिर बिल्कुल शांत हो जाना, ये सब चीजें होने लगती है, तब थोड़ा समझना है कि नाउ स्ट्रेस इज ओवरवेलमिंग. नाउ आपका स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी कम हो या फिर स्ट्रेस का लेवल थोड़ा बढ़ चुका है. सो दिस इज द डिस्टिंगुइशिंग फैक्टर कि लाइफ में स्ट्रेस थोड़ा जरूरी है, बट वो हावी होता है और ये सब चीजें आती है, तो समझना कि यस नाउ दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. हाँ जी,
1: कभी कभार स्ट्रेस होना भी जरूरी है
2: एक लिमिट में.
1: यस.
0: सो ये सब बातें याद रखिएगा किस तरीके से होती है, और भी अपनी बहुत सारी बातें होगी, लेकिन कुछ देर में, तब तक स्टे ट्यून.

0: आज के यूथ में बहुत से मेंटल हेल्थ वाले प्रॉब्लम नजर आते हैं। इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। यू आर लिसनिंग MCM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है एंड हमारे साथ साइकेट्रिक डॉक्टर अमोल पाथरीकर सर। स्ट्रेस आता है या वो मेंटल हेल्थ से जूझता है तो उसे लगता है कि मैं एक सुट्टा मार लूंगा या एक ड्रिंक कर लूंगा सब ठीक हो जाएगा, तो ये कितना हार्मफुल है और अगर इससे बाहर निकलना है?
1: पहले तो देखो ये रिलेशन जो है ना कि स्ट्रेस और एडिक्शन, पहले तो ये कभी एक साथ जोड़ना नहीं है। अल्कोहल जैसी एक चीज है, जैसे वो आपके दिमाग में जो स्ट्रेस से जो चीजें ब्रेन में आती है उससे कई गुना ज्यादा अल्कोहल या एडिक्शन वो ब्रेन में वो निगेटिव चेंजेस लाता है। इतने हार्मोनल डिफिकल्टीज आती है उन चीजों में एडिक्शन की वजह से, जिसके वजह से आपका डिप्रेशन 10 गुना ज्यादा बढ़ता है। आपका क्या करता है, उतने थोड़ी देर के लिए हमें बस स्ट्रेस भुलाने के लिए वो 2-3 घंटा 4 घंटा आपका स्ट्रेस अल्कोहल कम करेगा, बट आपको दूसरे दिन जब उसका इफेक्ट निकल जाएगा एडिक्शन का, तो आपका स्ट्रेस 10 गुना ज्यादा बढ़ेगा। आप पहले से ज्यादा आप और स्ट्रेस और आप पहले से ज्यादा डिप्रेस फील करोगे। कि पहले लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेस ना आए इसलिए अल्कोहल पे, पर बाद में है ना ये इक्वेशन थोड़ा रिवर्स हो जाता है। फिर बाद में आप उसके ऊपर इतना डिपेंड हो जाते हो कि आप अल्कोहल का क्वांटिटी बढ़ाने के बाद भी आपको स्ट्रेस उतना हैंडल होता नहीं है, आप वो सैडनेस आता ही है। यानी पहले मुझे मैं थोड़ा ड्रिंक करता था तो मुझे ठीक लगता था, मुझे मेरा क्वांटिटी मैंने बढ़ा दिया तो भी मुझे पहले जैसा ठीक नहीं लग रहा है। अल्कोहल आपके दिमाग में चेंजेस लाएगा, साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकली भी लाएगा। और तीसरा कि यही कि अल्कोहलिक्स में सुसाइड रेट भी बहुत ज्यादा होता है प्रैक्टिकली सी। तो क्या है कि अल्कोहल आपका स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाता, यानी कैपेसिटी कभी नहीं बढ़ाता है, रादर आपको स्ट्रेस के लिए और डिफिकल्ट कर देता है। आपको जिंदगी जीना डिफिकल्ट हो जाती है उससे, आप स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते।
0: मतलब एक बहाने है स्ट्रेस कम करने की, तो बात गलत है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धोए में उड़ाता चला गया। ये चीजें बस गाने में अच्छी लगती है, रियलिटी में नहीं। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू लॉर्ड। आज हमने यूथ के मेंटल हेल्थ के बारे में बात की, आई होप कि इससे हमारे यूथ को जरूर कुछ फायदा होगा। स्टे ट्यून्ड।
2: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
4: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
4: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
3: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in। ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स BTech 4 इयर्स आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग, VLSI डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, रोबोटिक्स अँड ऑटोमेशन। फॉर ऍडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टॅक्ट 9371714253 और विजिट MGM कॅम्पस N6 सिडको छत्रपती संभाजीनगर।

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एमजीएम युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
2: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
1: पीजी, एमटेक इन एआय अँड एमएल, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये पीएचडी करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
2: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942.
1: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
3: तो एमजीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
1: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 और 9665353515.

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।